चमक फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हे सुनने वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सोने चांदी के सिक्कों के रूप में भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। रात्रि के समय घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। अपने मकानों को शुद्ध स्वच्छ करके खूब सजाया जाता है ताकि लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उनमें निवास करें। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी सिया जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो उनका राज तिलक किया गया। इस खुशी में अयोध्या के नर नारियों ने अपने घरों में दीपक जलाए थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। प्यारे भक्तों, इस पावन उत्सव के दिन महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से मुंह मांगा फल मिलता है, खुशियां मिलती हैं और शुभ लाभ मिलता है। आप सबको दीपावली की

live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. Ga jij binnenkort trouwen? Door विवाह होने वाला है तो शादी होने वाला है सुनवा लो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खयाई बिनकोट रहा तोर विवाह होने वाला है तोर शादी होने वाला है नेम कांटेक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

पुण्य संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार हॉनेट यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net

व्हाट अ ग्रेट सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना है ये। आ जा रे प्यार ने पुकारा, सोने को में खेप द म्यूजिक कमाक्ट आउट फिल्म दिल ने फिर याद किया। बैना 8:08 alweer.

Ujanas Sona Chireya. उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप देखें ujala.nl।

Oh, Maria. Film सागर का गीत आशा जी एंड एस पी बाला सुब्रमण्यम, इन दोनों की आवाजों में आप सुने उजाला रेडियो पर। आशा जी मदन मत किशोर कुमार राहुल देव बर्मन के साथ यादों की बारात। उजाला रेडियो है

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4 ला.

हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तुम आने चाहे ना माने। लता एंड मुकेश जी से आप सुने फिल्म फर्ज का गीत, उजाला रेडियो।

और छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, बताइए कि अब हम किधर जाए। फिल्म वो कौन थी गीत के गाने वाले? लता जी एंड महेंद्र कपूर। एंड लता जी एक बार फिर हिस्सा ले रही है प्रोग्राम में। इस बार होंगे मनमोहन सिंह।

0: से है
1: और तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम।
0: तेरी खुशी
1: लता जी एंड मनमोहन सिंह, फिल्म वारिस से आप सुने उजाला रेडियो पर।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

0: live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: करते हैं।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

दोस्तों बैठे गाना हंगामा का प्रोग्राम धीरे धीरे अब खत्म होने को आ रहे हैं। बदांग फ्रोज लाइव उजाला रेडियो, हम विदाई लेते हैं इस खूबसूरत बैठे गाना के साथ।

सुनवालो नमस्कार, यह है उजाला रेडियो का बैठे गाना हंगामा प्रोग्राम। वेलकम बै उजाला रेडियो और देश गजलग जोंदाग मिदाग। और लीफ लाइस्टर्स खा लेकर सित एंड खनीत फॉर्म द म्यूजिक। अब आ रहे हैं एक जबरदस्त मस्त बैठे गाना।

जान रेडियो पर आज की बैठ गाना हंगामा प्रोग्राम ये शाम अब समाप्त होने वाला है। सभी लाश को धन्यवाद। अब और एक आखिरी बैठ गाना आप सुनने को जा रहे हैं।

मृग के खाल पर बैठे अति सती लोग, बकरे के खाल देखो पानी भर लाई है, गैड़ के खाल सलर

दोस्तों, हम यही उम्मीद करेला कि आज बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया, आप आनंद लिए हैं। अब आ गया है वक्त आज के लिए आखिरी बैठक गाना।

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहीद गुलजार। ये है यू आर उजाला रेडियो का पैगाम और कुछ देर तक आपके खिदमत में कुछ मिले जुले संगीत पेश खिदमत है। वादा करो जानम।

वादा करो जानम, द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में आप सिलेक्शन अभी सुने हैं उजाला रेडियो यूआर के जरिए, और शहीद गुलजार आपकी खिदमत में हाजिर है लेकर कुछ मिले जुले संगीत, और ऐसे में हो जाए कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में इज दिस लव।

प्रोडक्शन पेश की गई है सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाज। हमारे सभी श्रोताओं के मनोरंजन के वास्ते कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। और ऐसे में तुझे देख

तुझे देख देख कर सोना, जिया ढरक ढरक जाए। राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज में आप नगमा सुने हैं। जी आर के फोन का नंबर है एम्स्टरडम शहर में 02040908 07। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामर काज के वास्ते आप डायल कर सकते हैं, जैसे इश्तहार, जरूरी खबरें, खास फरमाइश, मृत्यु समाचार, मौत की खबर या कोई भी कार्य के वास्ते आप डायल कर सकते हैं 02040908 07 पर। शो मार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक। लीजिए पेश खिदमत है कहो ना कहो।

0: Jala Radio, Radio. Du Jane Hill, doch, doch, doch.
1: लकी अली की आवाज में आइए अब एक सिलेक्शन सुनते हैं उजाला रेडियो के जरिए। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं आप सभी खुश रहे और सलामत रहे। जाने क्या ढूंढता है लकी अली की आवाज़।

लीजिए प्रोग्राम में पेश खिदमत है पेनास मसानी और तलत अजीज की आवाज। ये बहार कह रही है यही है प्यार का समा, मेरी आरजू पुकारे कि मेरे दिल रुबा है कहाँ।

You and I will be together till the end of time. I promise I will never let you go. Now that I know you love me, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं।

Yes, my dear, I will never let you go. फिल्म का नाम दे दना दन, राहत फतेह अली खान और साथियों की आवाज में आप सिलेक्शन सुने हैं। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दो, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दो।

The Rocking Sensation, You Are उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं कुछ मिले जुले संगीत में। आइए अब सुनते हैं दिलबर, दिलबर। फोन का नंबर नोट कर लेना, यू आर का फोन का नंबर सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर तीन दिन में 3 बजे तक 020 409 08 07।

तुमसे मिलने के बाद दिल भर ओ लवली होश ना खबर है कैसा सर है होश ना खबर है तुमसे मिलने के बाद दिल भर मिले जुले संगीत में कुछ अच्छे अच्छे सिलेक्शन हम आपको सुना रहे हैं आज युवा का पैगाम में सिर्फ तुम फिल्म का नाम है सिर्फ तुम सन 1998 का फिल्म 1998

और एक तो कम जिंदगानी और ऊपर से और कम है जवानी, नेहा कक्कर उन्हीं की आवाज में और साथियों से आप सुने उजाला.nl इन्फॉर्मेशन के लिए।

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

0: live vanuit de hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

ये उजाला रेडियो है और इस चुन के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, गीतों और गजले के साथ। वो प्रोग्राम जिसमें बातें हम कम करते हैं ताकि इत्मीनान से आप प्रोग्राम से लुफ्त उठा सके। तो चलिए हुजूर, पहली गजल की ओर हम चलते हैं। पेश है

तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। जगजीत सिंह की आवाज में आप गजल को सुनें।

चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। पंकज उधास जी की आवाज में गजल को आप सुने। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया।

जब कभी साकिये मदहोश की याद आती है। गुलाम अली, हाँ गुलाम अली साहब की आवाज में आप सुने। हम बड़ी खुशनसीब है कि आप भी हमारा प्रोग्राम को सुन रहे हैं।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुने कि जवाब जिनका नहीं वो सवाल होते हैं, जवाब जिनका नहीं वो सवाल होते हैं। अगली गजल सुनेंगे हम।
1: एक महफिल में आपका इस्तकबाल है। गजल चाहे हमारी मौसीकी और अदब का हिस्सा हो, गजल बहा ले जाती है हमें खुमार के माहौल में। और जब गजल सरा हो चंदन दास, तो गजलों का हर मुरीद चाहेगा कि ये माहौल बरकरार रहे ता जिंदगी। क्योंकि चंदन दास की आवाज की लचक, अल्फाज की अदायगी और सुरों से आंख मिचौली खेलने के अंदाज ने इनकी एक अलग पहचान बना दी है, जिसे बार बार सुनने को, गुनगुनाने को जी चाहता है। मैं जनाब चंदन दास से कहना चाहता हूं कि इस महफिल के हाजरीन तो खुशकिस्मत हैं, जो यहां मौजूद नहीं वो शायद कह रहे होंगे कि घर मेरा काश तेरे घर के बराबर होता, घर मेरा काश तेरे घर के बराबर होता, तू ना आता तेरी आवाज तो आती रहती। अब आप हैं, चंदन दास हैं, और है वो माहौल खुमार का, क्योंकि ये है एक महफिल।

सबको दुश्मन बना लिया मैंने और आपसे दिल लगा लिया मैंने। चंदन दास की आवाज में आप सुने गीत और गजल की दुनिया में उजाला रेडियो पर।

चांद के बाद सितारों की तरफ क्या देखूं, चांद के बाद सितारों की तरफ क्या देखूं, तुझे देखा तो हजारों की तरफ क्या देखूं। पंकज उदास की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो है, ये गीत और गजल की दुनिया।

गुस्ताखी और बढ़ गई अपने ही ख्वाब में, फिर एक गुलाब रख दिया उनकी किताब में। मनहर उदास जी की आवाज में आप सुने गीत और गजल की दुनिया में। और आपको पता है ना कि आपके साथ साथ और हजारों लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जो कि हमारी खुशनसीबी है।

0: दिल की बात कह दी, आज चलो अच्छा हुआ। और गज़ल को आप सुने जगजीत सिंह की आवाज़ में। सुनने वालों, अब इसी के साथ समाप्त किया जा रहा है।
1: Vanuit de Hoofdstad.

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होनतेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

ये उजाला रेडियो है, सभी सुनने वालों को स्वागत है। इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आप लोग जो तैयार है तो हम भी तैयार है। इस तरफ उजाला रेडियो लेकर के प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। गीत और गजल की दुनिया साप्ताहिक प्रोग्राम है जिसमें गीतों और गजलें हम आपको सुनाते हैं, बातें कम, ताकि इत्मीनान से आप प्रोग्राम को सुन सके और भी लुफ्त उठा सके।

तो चलिए प्रोग्राम में पहली गजल जो आप सुनेंगे तो ये पेश है चंदन दास की आवाज में।

जब मेरी हकीकत जा जाकर उनको जो सुनाए, लोगों ने कुछ सच कहा कुछ झूठ कहा लोगों ने। चंदन दास की आवाज़ में आप इस गज़ल को सुनें।

तीन साथी आप देख रहे हैं स्टेज पे, तो गिटार और संतूर, ये दोनों तीन चार घंटे बजाने के बाद थक जाते हैं। लेकिन हमारे जो तबला नवाज हैं, सारी रात बजाएंगे, थकेंगे नहीं।

इनसे पूछा कि भाई क्या राज है, थकते नहीं हैं आप इतना तबला बजाते हुए, कौन से बादाम खाते हैं। लेकिन इन्होंने बताया नहीं मुझे। फिर हमने भी कुछ जासूस लगा दिए पता लगाने के लिए, और पता लगा ली जरा राज की बात है। आपको बता रहा हूं, आप किसी से कहिएगा नहीं। इन्होंने क्या किया है कि इनका जो दाहिना तबला है, राइट साइड का, उसके ऊपर इन्होंने अपनी वाइफ की फोटो बना ली। और जो बायां है, लेफ्ट साइड का, उसके ऊपर अपनी सास की फोटो बना ली। तो इनके साथ जो घर में होता है उसका बदला यहां लेते हैं।

लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। लाइव रिकॉर्डिंग अनूप जलोता जी के आवाज में आप सुने, उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया।

इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम, ये दिल आज भी बेकरार है। भूपिंदर और आशा जी की आवाज़ों में आप इस गज़ल को सुनी, फिल्मी गज़ल और पेश आई है फिल्म एतबार में। जगजीत सिंह हिस्सा लेंगे अब।

जो बीत गया गुजर क्यों नहीं जाता। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने और ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया।

0: बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में आप सुने, और ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया पेश है।
1: एक ताज़ा गजल पेश खिदमत है, ये गजल आपको जरा इस तचल की याद दिलाएगी।